सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: भी बहुत उतरता है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बहुत उतर जाए तो अच्छा है, यहाँ आया है क्या? वाह बहुत उतरा, ऐसे होता है ना, किसकी मेहमान करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो, हाय ये मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

giorni mi onoko Yeah, I should.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा सुनो, पापा और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, रोब क्यों? होते ना

0: माफ कर रही है लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Oh,

होकर ये करने। एक तो अपने से वास्ता, को सत्य

sig. Fjerde sakala på. Sig grådå. Chota gråd vi. जैसे हाथ उठाने में एवर रेडी हो गए ना, ऐसे ही त्याग करने में भी एवर रेडी. दूसरी सीजन कौन सी सभा होगी? निर्विघ्न पाप के दिल पसंद पसंद.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजा पर नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते, अपना हक कोई छोड़े नहीं चाहता। आप अपना परमात्म हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता, छोटे छोटे जाती तो

0: me viatas, ne me viata. Por ne me viata. Lekin babka bohut purana. Slogan. Sada yadro.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे योग भी दे सकते हो। सकाश दे सकते

और वो

इस साइलेंस के सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टेंस अनुसार से भी लोग भी कहते हैं जो करना है वो आप कर लो, जो सोचना है आप सोच लो। इसलिए

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कुछ।

शरारत कर रही है। जब आप

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जय विदेशी, जय भारतवंश है तो दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो है, हिम्मत समय हुई है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान होना पांडव है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

your secret.

Seram. Sadik.

bimbolagdita. Satsa.

teacher de Kagami.

Escute abdômen.

Sub question.

किसी भी प्रकार

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Kisses.

分量。

Sport.

0: तरस पड़ता है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

Istedim.

dame pap que sana.

0: भी साकार में आ जाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन बदलेंगे। हाथ उठाया पक्का कि कहेंगे मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, ये जवाब नहीं देना। क्यों कर अभी अचानक के खेल बहुत होने हैं। और बाप दादा के चाहता है एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चले। इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है शुभ भावना रखी, और कोई नहीं बदलता
2: Yeah.
1: रोज देखता रहेगा, बाप दादा को देखने में देरी नहीं लगती। ठीक है ना? अच्छा,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अब ये दो बातें दुनिया में प्रसिद्ध होनी चाहिए। एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं। ये दो बातें धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाए। जैसे अभी ब्रह्मा कुमारियों के बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। जैसे अभी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गई है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारियां मन की शांति, मन की उलझन मेडिटेशन से दूर कर रही है। ये धीरे धीरे अभी कोई भी मन में अशांति वाला समझता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इसका साधन अच्छा है। धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा ऐसे ये दो बातें अथॉरिटी वालों के पास प्रसिद्ध हो जाए। एक तो अगर सेटिस्फाई हो जाए और ऐसा बेफिक्र होगे कहे कि ये बात समझने की है, तो धीरे धीरे ये बात फैलती जाए। भाषण तो अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का भाषण पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। सुनने आते हैं, समझने लगे, लेकिन मुख्य बात अभी इसका आवाज होना चाहिए। ये तो विशेष बातें हैं। इसे ये सिद्ध हो सकते हैं कि इनको ये सिखाने वाला कौन, तो ऐसा पुरुषार्थ करो कोई अथॉरिटी है जो इन्हों को सिखाने वाली।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के

Jump.

नॉन बने और बच्चों को

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

पवित्रता का व्रत सभी ने लिए है, नपका नंबर वार भले है, लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थ

0: barbecue kebab. Sedap betul. Hey, betul suaru. Pernah nai berita suaru bapa betul tak? Tuh lagi. Fishes aja. क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने हैं? क्यों आपको रंग कौन सा लगा? परमात्मा के संग का रंग तो जैसे परम वो भी डबल पवित्र नहीं। आपका भाग्य है क्योंकि आप रहते ही परमात्मा के संग में हो। संग का रंग इतना पक्का रहता है जो डबल पवित्र बन जाता। होली करना आता है, जो हो चुका वो हो चुका। इससे आप डबल होली 21 जन्म रहते हो, एक जन्म नहीं, क्योंकि संगम के एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों का है। यहां आपने अगर एक सेकंड या एक मिनट सफल किया तो 21 जन्म आपका सफल रहेगा। गारंटी ऐसी होली मनाई है। होली करना आता है, जो बीता वो बीत गया होली। और तीसरे रूपरेखा क्या करते हैं, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो आपने भी क्या किया, योग अग्नि से अपने कमजोरियों को, संस्कारों को जो अनेक जन्मों के उल्टे संस्कार है, उसको योग अग्नि से जलाया है ना, जलाया है कि अभी भी जला रहे हैं। जलाया है जो समझते हैं हमने योग अग्नि से अपने पहले के संस्कार जलाया है, जल गए, वो हाथ उठाओ, जल गए कि अभी भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा तो आते हैं। बाप दादा के पास जब अपना चार्ट भेजते हैं ना, तो कहते हैं बहुत तो चले गए, चतुर है ना कहने में, कहते बहुत तो खत्म हो गए, कभी कभी तो राय मर्ज हो जाता है। लेकिन चलना माना चलना, चलने के बाद नाम निशानी नहीं रहता, मारने के बाद शरीर का यादगार तो दिखाई देता है ना, लेकिन चलने के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ जलाया, मारा नहीं, जलाया अभी, जो बिल्कुल नाम निशान खत्म। तो आप भी सब अपने को नोट करो, संस्कारों को मारा है या चला है, बस की है। की सबकी है, आप चलाते हो वो भी चलाते हैं। फिर बनाते बिना चलाने के मनाते नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: बच्चों के दीप जगेंगे, कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते है ना। आप विश्व में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सिर्फ एक बात याद रखना, ऐसे नहीं हो कि सेवा और सो उन्नति में बैलेंस में अंतर नहीं है। प्लान प्रैक्टिकल में करने के बाद ना तो सर्विस में बिजी हो गए ना, इसीलिए सोनती में अंतर आ गया। ये नहीं कहना दोनों का बैलेंस सदा रहना। क्यों दूसरों की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं, ये अच्छा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना ही सफलता। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल निकलना ही।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Deseo.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चारों ओर सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी सेवादारियों को मुबारक भी देती है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रही है और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा को करो बाप दादा, सेवा के लिए मना नहीं करते, और शोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल रहा थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्रह्मा परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। ये दुआएं का खाता बहुत जमा करो, अपील की दुआओं का खाता आपके आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है, इसलिए क्या करेंगे स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। ये नहीं सोचो ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा, बैलेंस कम कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के सबसे आश्चर्यवतों की सोचने को फिनिश करो। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। वो स्थिति को नीचे ऊपर करता है। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले। बाप ने कहा और बच्चे ने किया। हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क में फैमिली लाइफ वालों, आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझ कर चलना। परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, प्रजा तो बनती जाएगी साधारण प्रजा, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा के पास कोई जाए छोटा सा नेकलेस बना के लाओ, चाहे कंगन बना के लाओ, चाहे बड़ा हार बना के लाओ, लेकिन लाना जरूर, हाथ खाली नहीं आना है ना। हिम्मत हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान हिम्मत दोनों को तो आ जाएंगे। जैसे किसको टांग नहीं होती है ना, लकड़ी की टांग बना के दे देते, चलता तो है ना। तो आप हिम्मत की टांग दे दो, लकड़ी की नहीं देना, हिम्मत की। बहुत दुखी है, रहम दिल बनो। बाप दादा तो अज्ञानी बच्चों को भी देखता रहता है ना कि क्या अंदर क्या हालत है, बाहर का

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज चारों ओर के सर्व समानदारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे, इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है उससे बड़ा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: as patinhas. O Gernam Nicolau do Bodes. Fodan Miaj.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बच्चे को। स-

सुना क्या करना है अभी? मनसा सेवा को बनाओ, अपने कार्य के प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही हर एक को मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करना चाहिए। जब ज्यादा दुख होगा

Fish Bangalani ka swarup.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ये मिलन विचित्र है, सब इस बात में है।

씨 또래. 보통 아비

里。Seimose harba jaga dene de va va va va mera baba.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े बोले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा। और जो साथी है वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, पापा की पंडाली अच्छी हो, अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल रखती है थोड़ी। फिर समझती है कि क्या करें, ये मदद करता ना, अभी वो चला गया, मदद कर चिंगिया सूता वह पाप है। तो उस समय कौन दिखाई देते हैं? चिंगिया सूया पाप। तो ये रायल माया ये फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिवान साथ है, चाहे स्टूडेंट में स्पष्टता होती है। बोलेंगे एक बात, आप भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, लेकिन योग की बात जोड़ो, सिर्फ बोल में भी किस में मिठास होता है, किस में स्पष्ट कैचिंग पावर होती है। तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाती है। तो इसीलिए उनका नाम भी हो जाता है, कौन चाहिए फलानी चाहिए, कौन आवे फलानी है, चाहे योग में भले कच्ची भी हो, लेकिन इस बार नंबर फाइनल नहीं होने, जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं दियोंगा कि इसने ने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट बनाए, सेंटर बनाए, योग्य कितनों को बनाए। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्माओं को योग्य कितनों को बनाए, नाम हो गया डिसेंटर की इंचार्ज, और 30 में से 15 हिल रही है, 15 ठीक है, तो क्या हुआ? सिर्फ यह नाम हुआ, सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र, लेकिन नंबर इसे नहीं मिले। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्ति रही उसी प्रमाण मिलेंगे। इसीलिए ये भी चाहिए चाहिए कदम कर, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज ही देखते रहे कि फलानी जगह हुआ, मेरे को फिर भी नहीं मिला, अभी देखो परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेंगी। तो मुख्य बात

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है, मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होते। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है, लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए? खुशी हर एक की अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है, तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
2: ठीक है तो।
1: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते, और बाप उन बच्चों को देख सूखम में उनके ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उनों को भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रात्रि के समय जब सोने जाओ तो चेक करना जो संकल्प किया वो हो रहा है, अगर नहीं हो रहा हो तो रात को सोने के पहले ही दूसरे दिन के उमंग उत्साह को इमर्ज करके फिर सोना और सुबह उठकर देखना कि किया हुआ संकल्प अभी भी इमर्ज है या थोड़ा भी इमर्ज हो गया। अगर मर्ज हो गया हो फिर उमंग पहला।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बहुत दुखी है बाप दादा को, अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रहमाना चाहिए। कितना पुकार रहे अभी आवाज, पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय के पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुना तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे, जिगर से पुकार रहे, तरफ रहे। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे पुकारे। आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो, स्वयं आपके कोई रहम नहीं कर सकता। Masters.

ausfallen. Bye.

0: चिल्ली की किरणाएं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बच्चों को

つける。

की भी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सब वाह वाह हो ना।

पैर तब तो याद करते।

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद।

वहां शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं, मैं कौन बाबा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी सेकंड में सभी मैं परम धाम निवासी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जय ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामिक रामी नहीं सेवा दरियो अच्छी, लेकिन नाम नहीं है आपका, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपके नंबर आखिरी हो। क्यों कि बाप दादा ये नहीं देखता, हिसाब रखते हैं, चांस नहीं मिला स्वार्थ नहीं, कल्याण का स्वार्थ। अगर मानो आपको चांस है और दूसरे समझते हैं कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा, योग्य भी है। अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा है, चाहे आपने नहीं किया, लेकिन या किसको चांस तो उसमें भी आपका शेयर जमा हुआ, क्योंकि सच्चा डायमंड बनाना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो। ऐसे लंबे नहीं चलो, ठीक है, हो गया दिन। बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब, कच्चोपरा आपको कुछ करना नहीं पड़ता है ऑटोमेटिक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। ये आंखें बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है या तीसरा करता है। बाप इतना भी फोर्स दे के कहते हैं, अगर कोई फिल्ला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा ने आज थोड़ा सा बच सुना रही है, बुरा तो नहीं लगता है? बुरा लगता है? नहीं। अच्छा, तो एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय सदा ने कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करती है, वर्णन भी करती है एक दो से। क्या है, सबको देख लिए, महारथी भी करते हैं, हम तो है पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना, हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्स दिला के भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, रीस करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। मन को सुनने के बजाय अंतर्मुखी रखो। समझा?

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Ouch!

Yoga. Yes, Sangam Yoga. सभी युग में से मौजूद

0: तो आज के दिन को भी याद करने से सने के आगे मेहनत समाप्त हो जाए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर, ना कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना, ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाके खुशी का एक मास खजाना जमा रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म तो नहीं होगा ना। खत्म होगा क्या? होगा सदा साथ रहना। बाप क्यों दे दिया ना, दे दिया है, अच्छा दिल भी दे दिया। दिल बाप को दिए अगर दिल दे दिए तो आपके पास दिल आपके लिए नहीं। जैसे डायरेक्शन दे वैसे, तो बताओ जिसने दिल दिल आराम को दे दी, वो कभी किसी भी आत्माओं से दिल लगाएगा? लगाएगा नहीं लगाएगा तो दिल लगी की दिल नहीं लगाना। बाप की अमानत, दिल आराम को दिल दे दी, दिल लगी की कहानियां बहुत आती है। तो कुमार याद रखना, ऐसे तो प्रवृत्ति वाले भी या कुमार भी, लेकिन आज कुमारों का दिन है ना, तो बाप दादा ये अटेंशन दिलाते। कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं है, हमारी दिलाई ने बाप को दे दी तो दिल कैसे लगेंगे? कमजोर हो तो कमजोर दिल को यहां से मजबूत करके जाना। इसमें आज ही है कि वाकई के सरकमस्टेंसेस ऐसे थे, कुछ भी हो जाए, जब बाप दादा से वचन कर लिया, कितने भी मुश्किल आवे लेकिन फिर को नहीं छोड़ना। बाप के आगे वचन करना, वचन लेना, इस बात को भी याद रखना। कोई रही। एक मिनट के लिए अपने दिल से, वैसे दिल तो आपकी नहीं है, बाप को दे दी, फिर भी दिल में एक मिनट वचन करो कि सदा विघ्न विनाशक आज्ञाकारी रहेंगे।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं,
2: तो दुआएं
1: कराने।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सब देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुत्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुंचे, फैल जावे। शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत भरनी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो भ्रमणों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का

Awesome.

Or so.

तीसरा खाता है। पुण्य का खाता। पुण्य

0: सेवा करते हैं, चाहे मानस से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद तक के वृत्ति स्वभाव भाव और भावना से सेवा करना इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रिजल्ट देखा

Indonesia.

Roots.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, अभी समय के समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े सोट में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक। Some

0: веселее экшен. Аби.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय ना सिखाएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चेहरा बढ़ेगी, कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ ना कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। सेवा तो करते ही है, और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार तो आप ही देखते, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने अकाटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। क्योंकि टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपके हिम्मत पर तो खुश है, अब और साथी बनाओ और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठा यहाँ से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Peace.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सबने अपना अकाउंट रखा, जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है। नियम परवान, काम चलाओ नहीं, यथारथ रूप से जैसा भी है, लेकिन अकाउंट अपना पूरा रखा है, सच्चा सच्चा अकाउंट चलाओ नहीं। वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वाले ऊँटों जिन्होंने रखा है, वो ऊँटों खड़े हो जाओ। जिन्होंने रखा है, आगे वाले भी खड़े हो, पहली लाइन बैठे रहो। हम ये अच्छा अच्छा यहाँ टीवी रखी है, अच्छा हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे भी रखा है।

उस श्रीमत पर चलने की सब्जेक्ट में पास हुए, इसलिए कोई को फर्स्ट नंबर वालों को बाप दादा ने अपने तरफ से 25 मार्क्स बनाए, जो पहला नंबर है, और जो दूसरा नंबर है उसको 15 मार्क्स बनाए। ये एक्स्ट्रा लिफ्ट बाप दादा ने अपने तरफ से दी। तो फाइनल पेपर में आपकी ये मार्क्स जो है वो जमा होगी, पास भी तो अंदर होने में मदद मिलेगी। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है कोई भी कारण से, है तो अलबेलापन और तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है तो बाप दादा कहते हैं कि फिर भी

0: Asaruri, Srimad Namanese, Vastu Karotiyana, Atme Jav Avapana Potamel, Tramanusar, Dilke TV me dekhenge.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों
2: स्थिति
1: पास्ट स्थिति को सोचो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखिए

ये वाह वाह शब्द भूल रहा है।

Сыноедка.

0: सलाह देना, बात नहीं रहना। पाप और
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल पर स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं। क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं। कुछ सिक्या, कुछ किमिया, कुछ रैम, कुछ आत्मक सने उसकी आवश्यकता है। वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता, बैलेंस से सिक्या भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो। सिर्फ सिक्या से अभी सभी सिक्यक बन गए हैं, इसलिए सिक्या के साथ हिम्मत और सने दिल का बाहर का नहीं, लेकिन दिल का सने दोनों का बैलेंस रख करके दिन और ऐसे प्लान बनाओ और कोई ना कोई ऐसा प्लान चलता रहे, जैसे समय पर समय पट्टियां चलाते हैं ना, वो तो चलाते ही हूँ, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन। चाहे ना है उसमें मिलके नमाज के लिए ऐसा फर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए उसमें, रिजल्ट आती रहे। और चीकिंग भी हो, अगर नहीं करते हैं तो क्यों? अलबेलापन है तो उनके ऊपर सने से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समय पारा तो ऐसा कोई प्लान बनो, कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेंटर तो सब सेफ है,
2: सब ठीक है, ब्राह्मण परिवार भी ठीक है।
1: फिर भी बॉम्बे बाप का बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इसको जरूर बनाना। ये तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे?
2: गुलाबा सेंटर में तो बाहर नहीं निकलते हैं अभी, वहाँ हमारी बहनें भी जो है वो बाहर नहीं निकलती।
1: इससे बहुत कुछ होना है।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्रह्मन परिवार सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, बीच से तो है, लेकिन आपको विश्व का राज करना है ना, और राज में उस संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है, लेकिन संबंध संपर्क में यथारथ खजाना मिलता है, बिना संबंध संपर्क के आपको दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो है, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी, अगर दुआएं नहीं मिलती, अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथारथ रीत अगर समान संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए, और दुआओं की अनुभूति क्या होगी, अनुभवी तो होना, आकर सेवा से दुआएं मिलती है तो स्वयं भी हल्का रहेगा, और जिसके संपर्क में आए बाजा ठीक चलाना तो है ना, दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा, जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते लाइट होगा, हल्का बोझ नहीं महसूस करेंगे, और जिनकी सेवा की समान संपर्क में आए वो भी डबल लाइट फील करेंगे, अनुभव करेगा कि ये संबंध में सदा हल्का अर्थात इसी है, भारी नहीं रहेगा, संबंध में आओ ऐसी कहावत है, ज्यादा मीठे पार चींटियां बहुत आती है। इतना इसी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: लेकिन अब भी सभी बच्चों को

Дядка.

अमृत लेके अमृत वेले से लेके

Ate, but Giuseppe, our bike is a baby.

0: Radwelle. On sigila de Bachoco. Yo falo carnevale. Ono confiches.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

sucesso.

उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वो गलती नहीं है? उसने आजकल

Essen.

मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा भी बच्चों को मधुबन में देख खुश है।

бойцов.

切，馒头饭，没啊那，阿达，不是。Mother, what?

0: छूटे वालों को याद दिलाया जाता है। इसलिए मधुबन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ा, तो कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना, तो चतुराई नहीं करना। पाप को भी बहुत री जाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें, बाबा आप तो रहम दिलो ना, आप तो किमिया की सागर हो ना, बाप को भी याद कराती है, तो आप कौन हो? आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो। लेकिन मैं सोचता से सुना के खत्म, एक अखियर पका करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिजाते बहुत है, आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़े चतुराई करते। आप ही चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है के नहीं करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी हो, आपका काम है परों तक पहुंचाना, पहुंचाया अर्थात दिल से निकाला, आपकी जिम्मेवारी पूरी। अगर आप समझते हो कि कुछ हो नहीं रहा है, तो आपका इसमें पाप नहीं बनेगा, जो जिम्मेवार है उन्हों का बनेगा। आप निश्चिंत
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप दादा ने तो बहुत समय से

बीबी बच्चे तो सेफ है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Açık.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

लिप हो तो नहीं करते, बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते खुश होते, बहुत अच्छा वरदान है। रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना, कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: कम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000, लेकिन कम से कम बाप दादा इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनका परिचय तो रहता ही है, तो उन्हों को फिर से समय बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं काम ने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे बिना बिना सेंटर पर जाए। किस देश का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे, निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते। कितने भी निकालो जरूर, क्या है प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये फ्रिश्ते पर

0: शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलूं, मैं आत्मा ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे
1: रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा समय

विभाग दादा 20% छुट्टी देते है। मंसूर है देवे, ये काम देवे। अच्छा 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातें को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक सच्ची दिल

अस्पताल हो सकता है, 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए संकल्प भी वेस्ट नहीं। युद्ध नहीं विजय, 15 दिन के फुल विजय मुश्किल है कि इजी है? इजी है, हाथ उठाओ, इजी है, इजी है। बाप दादा ये 15 दिन के रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकते हैं, कर सकती है ना, 80% लेना ही, फिर भी बाप दादा हल्का कर रहे हैं, 20% छोड़ रहे हैं।

0: Las rayeladas. Yeta, yeta. Y rayeladas. A la vela pan.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पांडवों का गायन किया पांडव सदा पांडव पति के साथ और साथी रहे, साथ भी रहे साथी भी रहे, इसीलिए पांडवों का टाइटल क्या है, विजयी पांडव। विजय हो गई ना पांडवों की, कारण परमात्म साथ और साथी। इसी में मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चेहरे और चलन में साथी रहो। पसंद है साथ रहेंगे साथी रहेंगे, माया का दरवाजा बंद,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Shut up.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वैसे तो ये संगम योगी परमात्म प्यार के आप पात्र हो, लेकिन आज विशेष आज के दुनिया के हिसाब से प्यार का दिन है। तो बाप दादा भी चारों

가져오고 할아버지가

Bye.

love.

Bien.

خوشی کی کورا.

Bob.

Problem.

नैनो में

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनने नहीं चाहते। आपस में भी क्या कहते हो, कौन बनाया, रूप में कौन मूरत देखने चाहते। तो कर्म से विशेष सहयोग, गुरों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहता, देखने चाहता। Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: करते

0: दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे आप बाप को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद करने बिना। बाप भी मर्ज कर

बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे बाप को देख रहे हैं। सभी सदा खुश जो कभी कभी खुश रहती है और कोई सदा खुश रहती है। सदा खुश रहने वाले बाप की आंखों के

पंचों का कभी भी कोई बात हो जाती है तो वो भी भूलता नहीं, बाप के पास पहुंचता है। ये नाता ही

बिल्कुल सत्य नहीं, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा दिल का नाता है जो दिल

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा, को पता है हाथ उठवाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है, कौन तैयार है अभी भी। और अंतर्मुखी सूक्ष्म चीकिंग करो, अच्छा कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना कार्यस्थान मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहिए।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसा एक दो को सहयोगी बनाओ जो सभी मास्टर्स।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखा है कि क्रोध के सब्जेक्ट में बहुत कम पास ऐसी समझती है, शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं है। से लाल पीला नहीं

0: इसलिए तीसरा रूप भी है, वो चतुराई का रूप है, क्रोध के चतुराई का रूप है। वो क्या है? कहने में, समझने में, ऐसे समझती है वह कहती है कि कहां कहां सीरियस होना ही पड़ता है, कहां कहां ला उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वो अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में ला उठाने की छूटी नहीं दी है। ला उठाने की छूटी है, दी है। कोई मुरली में कहा है क्या, ला भले उठाओ क्रोध नहीं करो। उठाने वाले अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्मा ही है उनको ला उठाना नहीं पड़ता है, लेकिन ला रिवाइज कराना पड़ता है। ला उठाते नहीं, कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है रिवाइज करना पड़ता है। इतनी छुट्टी है निमित्त बनने वालों को, सबको नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप को बर्तन क्या करना है तो क्या करना है, सदा मुश्किलता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में कोई उलझन में नहीं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी दो शब्द याद करो, माया से इशारा करो गेट आउट और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। ये दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है अब तो खर्चा नहीं, घर के नजारे मन में बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, अब घर चलना है तो ये लहर हर एक जय भारत जय विदेश, अब ये अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है जाना है, याद रहता तो बेहद का वैराग ये कोई भी प्रकार का मन के संकल्पों का आपस में संगठन के माया के विघ्नों का एकदम समाप्त कर देगा। ये माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएगा। ये जो छोटे मोटे पेपर आते हैं, ये पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे, गिफ्ट और लिफ्ट। समझा? अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

समझते हो, व्यर्थ संकल्प का जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प किया वो कह क्योंकि इस व्यर्थ संकल्पों में समय बहुत ज्यादा है। परमाणु कार्य

0: este nega.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देश का अपमान, देश का मान फिर भी अलग की चीज है, लेकिन देश का अपमान ये बहुत सूखम है। मेरा इसको ही देश का अपमान कहा जाता। Stop.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए। ये मैं बन धोखा दे देता। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित और निर्माण बाउस बाप दादा ने
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक

0: सर्वन आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट है तो सिर्फ शिवरात्रि के सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे जिससे भी संपर्क हो उसको
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बाप दादा समझते हैं आज के इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता, कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है, उसमें फर्क पड़ जाता। कारण क्या? चार को नहीं देखते, एक को बहुत देखते, इसीलिए

0: परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदली करे, बदली करे, नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालते हैं, मंजूर है, बताए बताए। अच्छा, बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए। बाप दादा तो कहते हैं स्व परिवार से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैपन से मरना है। तो मरना भी पड़े
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

अटेंशन भी देती है, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है, लेकिन समय अचानक

0: नंबर थोड़ा सा पीछे है वो बात अलग है, लेकिन अटेंशन है, परिवर्तन भी है, ये चीज कर अलबेलापन तो नहीं आता, हो जाएगी हो जाएंगे, ये क्या बड़ी बात है, इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। तो बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ मैजॉरिटी खुश भी है, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती, तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन, किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अटेंशन पूरा हो। ऐसे नहीं सोचे ये तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वो आ जाते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते। Baby.

extra.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Challenge.

समस्या आपके लिए नहीं बात।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Hey.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी निश्चय पर बात नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: करना इसे ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उससे रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं कि ये बात तो पहली वाली तो वो थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीच वही होता है। सब रूप परिवर्तित होते हैं, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अटेंशन रखो दो बात का, एक सच्ची दिल सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से क्या है, गैस का गुब्बारा बढ़ जाता। इसीलिए माँ दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन के लिए लाइन में डिस्टर्बन नहीं, कटाफ नहीं हो। जो बाप दादा एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, वो मिल नहीं सके, लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कटाव है, तो ये जो प्राप्ति होनी चाहिए ना कहीं बच्चे कहते हैं, कहते नहीं है तो सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कब मिलता? कारण क्या? बाप तो दादा है, सागर है, जितना जो लेने चाहिए बाप दादा के भंडारी में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है, बाबा का जी हाजर, बाबा का लो दादा है ना, दादा भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? लेकिन ये दो बातें सच्ची दिल साफ चतुराई नहीं करो, चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई भी करते हैं। साफ दिल सच्ची दिल और बुद्धि की लाइन सदा जी करो क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टर्बन क्लियर नहीं करने दे। ये जरूर करो।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत संस्कार ऐसे संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहती हो वो मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसे कहते हो, तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया और किया जाता है ना कभी, तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है, है नहीं है ना? तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार। संस्कार आत्मा अभिमानी में ये संस्कार

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Awesome.

الشجرة. Chana Nessie.

उस मर्दी ने

शब्द ने मेरा बाबा भाग्य विधाता

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी तरफ रहना नहीं चाहिए, संदेश देना चाहिए और फॉरेन की सेवा शुरू से। ऐसे ही भारत में भी, विदेश में भी, कोई भी, चाहे शाखा है, लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। आज पर भी नहीं अब क्योंकि समय पांचों तत्व बाप के पास आते हैं आपको बताओ कब तक दुख चलेगा खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे मनुष्य आत्माओं को भी दुखी करेंगे ना इसलिए जो भी आई है उसको संकल्प करना है कि जैसे ब्रह्मांड जीवन आवश्यक है वैसे अभी के समय अनुसार हर एक को सेवा भी जरूरी करो या करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम
2: सत्यम शिवम सुंदरम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: फरिश्ता स्वरूप में रहना है, इसको ही कहा जाता है दीवर पुरुषत।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Summer.

Es ist am Ende.

0: कपाओ के ब्रत शुभ भावना शुभ कामना की वृद्धि और दृष्टि
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप के मदद का है, ये अनुभव करके देखना। हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? कितने सर जन्म की आदत है बोझ संभालने की। बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं होना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर, मजबूत है ना। आगे बैठी हुई क्या है, मजबूत। Revise

Course, a bit around.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो भी, जितने भी आपके सेवा साथी हैं, सिक्किया भी देते हो तो सिक्किया के साथ सने भी देना, जिससे वो सने के आधार से अपने को आगे बढ़ा सके। ऐसा सने नहीं देना जो वो सने का लाभ उठावे, जो भी करो फिर ऐसा सने नहीं देना। बाप दादा खुश है छोटे मित बने हैं, अटेंशन देते भी हैं, लेकिन और अटेंशन देंगे, संतुष्ट भी करो और विश्व को संतुष्टि का किरणाएं पहुंचे, ये भी कार्य निमित्त वालों को करना है। उसका कारण कि जो निमित्त है अपने हैंड्स के संस्कार परिवर्तन कराने में थोड़ी मेहनत करनी पड़े। सेवा कराते हो, रहने खाने का प्रबंध मेजॉरिटी सेंटर देती, लेकिन औरों में शक्ति ऐसी बढ़ो जो बाप से शक्ति ले आपके सेवा स्थान का वायुमंडल ऐसा बनाए, जो भी आवे वो पहले तो वायुमंडल के आकर्षण में आ जाए। क्योंकि आजकल सब यही चाहते हैं कि ऐसे कोई कार्य हो जिम्मेवार

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

que

appreciate.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सशक्ति द्वारा।

thing. Eat one.

once.

poate avără. Cinci cărnă. O schia ușită. Monday.

a pillar vos. Che se prestachar. Qui pate el rey. A pe. Body what?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तीन मास का अभ्यास सदा काल का अनुभवी बना देगा। अगर अपन ने उमंग उत्साह से किया तो मजबूरी से किया, तीन मास पास करने फिर तो सदा नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदा काल के अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लोग एक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सिंड्रा खोलने का उमंग रहता है ना। लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य के निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो, लौकिक पन नहीं हो। अलौकिक पन है लौकिक कार्य में भी समर्पण। लौकिक कार्य छोड़ के समर्पण समारोह मनाना है, ये बात नहीं। नहीं तो फिर ती कैसे होगी। इसीलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो तो ऐसी आत्माओं को जो निमित्त लौकिक समझती है और रहती अलौकिकता में, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक। समझा। इसीलिए ये नहीं कहना दादी हम कुछ रहो नहीं कहूँ। और ये डबल प्रालंबित बना रहे आवश्यकता अगर समझेंगे तो आप बीच रहेंगे। आपको क्या जिम्मेवार दिया है, आप अपने लौकिकता में अलौकिकता लाओ। थको नहीं, थक जाते लौकिक काम करके तक के आते है, क्या करें। नहीं खुशी खुशी में दोनों निभाओ, क्योंकि टीका है कि डबल विदेशी आत्माओं में कार्य दोनों तरफ करने की शक्ति है। तो अपनी शक्ति को कार्य में लगाओ। कब छोड़ेंगे, क्या होगा, ये पाप और दादी या जो निमित्त है ना उनके ऊपर छोड़ दो, आप नहीं सोचो। कौन कौन है जो लौकिक कार्य भी करते और सिंडर भी संभालते, हाथ ड्रम लौकिक कार्य भी करते हैं और सेवा के केंद्र भी संभालते। हाँ उठाओ हाथ। अच्छा पीछे बैठे। अच्छा है, आप निश्चिंत रहो, नंबर आप लोगों को वेस्ट ही मिलेंगे, जो सारा धन सेवा करते हैं उन्हों जितना ही मिलेगा। सिर्फ ट्रस्टी होंगे करना, मैं बन में नहीं आना, मैं इतना काम करती हूँ, मैं बन नहीं करा बना हार करा रहे, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ के आधार पर चल।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Jay.

vai fare il nasco. Passa nena. Passa nena.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Jim Gobi. Bitte.

さ

Achaque.

ちをそっとして。

personne.

ಸಂತುಷ್ಟ.

钱。परेशान नहीं होता।

0: Chân ăn bột.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Siat Mongko. Siapa dewe? Emerge kado. Siat

needed me.

ciebie. Вишва севако. Садатен. Фани дванадесе. Сивак.

Sangalapa.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक सैंपल के रूप में है,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट तो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता, बाप दादा, सर्व बच्चों को जय मधु परमेश्वर नमः। जय देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको जहां भी बैठे हैं, लेकिन दिल से दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।